तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।

ये किस काम का, तू सहारा अगर ना किसी का बना। तो ये जीवन तेरा है, ये बस नाम का। आदमी तू अगर आदमी ना बना।

काम आना किसी के है एक बंदगी, एक बार ही मिलती है ये जिंदगी। काम आना किसी के है एक बंदगी, रोने वालों को जो

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने,

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

बीते पल में याद कराता नहादा विश्वासिक दे गम दे मारू तली दे अंदर डाची कुमी सदरा दे चार चुफेरे ढूंढ जावा सुन मेरी हरदास कदे।

0: से दूर,
1: क्या बात है।
0: रुक सके वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, रुक सके वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए। अब
1: वाह जी,
0: तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर
1: वाह जी,

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च 2 रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता।

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरिया नू तू हमेशा याद रखी, नी मेरे बेले आबाद ना होवन तू अपने बेले आबाद रखी। जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होवन तो पहला मैनू दे के थोड़ा जहर जावी।

मैं सदा तेरे रादार उड़ा रहा नी, निकल गया रादार उड़ा, मंजिल दे वाले चले सी नी, मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रहा नी, निकल गया रादा रोड़ा, मंजिल दे वाले चले सी नी, मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू

0: दिन रात मेहनत करदे हां, मजदूर पक्की सरकारा होण जे फिर खुदकुशियां क्यों करदे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत करदे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसीं हुणे ही कुलवंत सिंह सैदोक जी दी कविता जिंदगी असी मजदूर तेरे सुन के हटे हो। ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवें उभरदे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़।

तैनू याद आएगा, किदां हिजर दे दाग, किदां हिजर दे दाग, तो या करेंगी तू करी करके मैनू याद।

अपने वीरानाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी, तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली मैं, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी।

जे डूब गई जे समतरी जांदे, ओ डूब जाना अजे भी बादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जर क्या भी नहीं।

जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई, जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करा जे आपे चे की करा।

जे डूब गई जे संतरी जांद है, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांद है। जोर ना मंग दे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंग दे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां।